0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूसी फजाई हुकाम ने पीर को मुख्तसर तौर पर मास्को के 4 हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं जब मुतअद्दिद ड्रोनों को रोका गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने टेलीग्राम पर कहा है कि शहर के जानब बढ़ने वाले 59 ड्रोनों को तबाह कर दिया गया है। सोबियानिन ने मजीद तफसीलात फराहम नहीं की और कहा है कि जहां ड्रोन मार गिरे हैं वहां एमरजेंसी सर्विसेज भेजी गई हैं। कीव ने अपने शहरों पर मास्को की बमबारी के जवाब में रूस में ड्रोन भेजे हैं, जहाँ हालांकि सोबियानिन ने ड्रोनों का ताल्लुक यूक्रेन से होने की वजाहत नहीं की। हुकाम ने आज अलग सुबह ऐलान किया है कि हवाई अड्डे दोबारा खुल गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते दोबारा ड्रोनों ने मास्को की वाहद आयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। इस हमले में मास्को के दिफाई निज़ाम ने तकरीबन 200 ड्रोनों को गिरा दिया था, जो शहर पर 2022 में रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद से एक बड़ा फजाई हमला था।
2: मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि फिलिपाइन के एक स्कूल में पीर के रोज होने वाली फायरिंग के वाक़े में कम से कम 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। यह वाक़ा टिकलुबान शहर के सैन होजे नेशनल हाई स्कूल में पेश आया और रोजनामा इंक्वायरर ने रिपोर्ट किया है कि 2 मुबैना मुलजमान में से एक पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान में से एक नाबालिग जो सैन होजे का रिहायशी है उसको इस वाक़े के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम ताहाल मफरूर है। हुकाम ने अभी तक मुतासरीन की शनाख्त जारी नहीं की क्योंकि तफ्तीशकार फायरिंग के हालात और हमले के मुहरिकात का तायुन कर रहे हैं। मुतासरीन और मुलजमान के दरमियान ताल्लुकात का तायुन भी ताहाल हल तलब है। पुलिस ने दूसरे मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार

0: करने के लिए ताकुब शुरू कर दिया है।
1: कतर के शहर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फैक्ट्री में तकनीकी खराबी के बायस होने वाले धमाके में 54 अफराद जख्मी और 18 लापता हो गए हैं। सिविल डिफेंस की टीमों और रेस्क्यू की खसूसी यूनिटों ने इतवार की शाम को होने वाले इस धमाके पर फौरी कार्रवाई की और वो मौका पर ही बहरान से निपटने का काम जारी रखे हुए हैं। वजारत ने तस्दीक की है कि यह हादसा संधि जोन के एक प्लांट में ऑपरेशन के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया है। हालांकि आवाम की हिफाजत के लिए खतरा बनने वाले किसी किस्म की गैस के अखराज का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया था। सूरत हाल की ताज़ा तरीन तफसीलात बताते हुए वजारत दाखिला ने अपने सरकारी सोशल मीडिया चैनल से कहा है कि रास लाफान सन्नती इलाके के एक कारखाने में पेश आने वाले वाकये में जख्मियों की कुल तादाद 54 अफराद तक पहुंच गई है, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का कतरी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप सिविल डिफेंस की टीमों के ताउन से 18 लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन कर रहा है।
0: यूनान की एक अदालत ने मगरबी थ्रेस में तुर्क अकलियत के 4 अफराद को एग्जाम थी कि मस्जिद चिनार में एहतजाज से मुंसलिक वाकयात के सिलसिले में मुजरिम करार देकर हर एक को 17 माह कैद की सज़ा सुनाई, ताहम सजाएं मुअत्तल करके माली जुर्मानों में तब्दील कर दी गईं। एग्जाम थी की अदालत ने मुजरिमान हुसैन बालताजी, ओजान अहमद ओलू, बहरी बुल्कू और मुराद कोसे को इस वाक़े से मुतालिक 2 अलग अलग इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया। ये मुकदमा मगरबी थ्रेस में चिनार मस्जिद के सामने पेश आने वाले वाकया से मुतालिक है, जहां रियासती नामजद मजहबी हुकाम की मौजूदगी पर कशीदगी पैदा हुई। 11 अक्टूबर 2024 को एग्जाम थी मदरसे के इफ्तिताही मौके पर रियासत की तरफ से नामजद मुफ्तियों ने जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मकामी जमात के बाद अफराद ने एहतजाज करते हुए उन्हें दाखिले से रोक दिया। यूरोप में मगरबी थ्रेस तुर्कों की फेडरेशन ने इन सजाओं की मजम्मत की, फैसला गैर जमहूरी करार दिया और मुजरिम करार दिए गए अफराद की हिमायत का इजहार किया। फेडरेशन ने कहा कि यह मुकदमा मुफ्तियों की तकर्री के हवाले से तवील उलमुद्दती तनाज़े और तुर्क अकलियत के मजहबी हकूक से गहरा ताल्लुक रखता है। उसने यूनान की इस प्रैक्टिस पर भी तनकीद की कि मुफ्तियों को रियासत के जरिए नामजद किया जाता है बजाय इसके कि अकलियती कम्यूनिटी को अपने मजहबी रहनुमाओं के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए। बयान के मुताबिक मुलजिमान ने तुर्क अकलियत की जानब से मुंतखब किए गए मुफ्ती की हिमायत की और रियासती नामजद मुफ्तियों की मुखालफत की। फेडरेशन का मौकफ था कि अदालत का फैसला मगरबी थ्रेस की तुर्क अकलियत की मजहबी खुद मुख्तारी को मुतासर करता है।
1: ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि इसने अपनी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बरामदी मुआहदा तय कर लिया है, जिसके तहत कैनेडा 2.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुआहदे में निगरानी की रेडार टेक्नोलॉजी खरीदेगा। दिफाई वजीर रिचर्ड मॉलस ने कैनेडा के वजीर ममलकत बराए दिफाई खरीदारी स्टीफन फोहर के साथ मिलकर इस मुआहदे का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये ऑस्ट्रेलिया की जानब से उफुक से पार रेडार टेक्नोलॉजी की बैरून मुल्क पहली फरोख्त है और ये कुतुब शुमाली के खत्े की निगरानी में कैनेडा की मदद करेगा। ओवर दी होरिजन रेडार टेक्नोलॉजी हाई फ्रीक्वेंसी वाली बरकी मकनातीसी लहरों को जमीन की फजा से टकराकर वापस मोड़ती है, ताकि इन दूर दराज की चीजों का पता लगाया जा सके जो जमीन की गोलाई की वजह से नजर नहीं आ सकती। अल्बनिस ने एक बयान में कहा है कि आज का मुआहदा ऑस्ट्रेलिया की दिफाई तजारत में एक अहम संगे मील है और कैनेडा के साथ दिफाई सन्नत के गहरे और बाहमी तौर पर फायदा मंद तआवुन की बुनियाद रखता है।
0: न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोलों से फतह हासिल करके मिस्र ने वर्ल्ड कप की तारीख में अपनी पहली जीत दर्ज करवा ली है। कनाडा के शहर वैंकूवर में खेले गए ग्रुप जी के इस मुकाबले में अगरचे न्यूजीलैंड ने 15वें मिनट में फिन सर्मन के गोल के जरिए बर्तरी हासिल कर दी थी, लेकिन मिस्र ने मोहम्मद सलाह, मुस्तफ़ा जेको और ट्रेजे गी के गोलों की बदौलत मैच को फतह के साथ ख़त्म किया। सलाह का 67वें मिनट में किया गया गोल उनके इंटरनेशनल कैरियर का 68वां गोल था। फिजा में मुक्का लहरा कर अपने गोल का जश्न मनाने वाले मिस्री फुटबॉलर के साथ ही खिलाड़ियों ने भी सलाह को घेर लिया और इस खुशी में शरीक हुए। मिस्र इस जीत के बाद ग्रुप जी में अपनी पहली पोजीशन पर पहुंच गया है, लेकिन उसने अभी तक अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने की हतमी जमानत हासिल नहीं की है। जुमे के रोज सियाटल में ईरान के खिलाफ एक फैसला कुन मैच खेलने वाले मिस्र को अगले मरहले में पहुंचने के लिए कम अज कम 1 बराबरी की जरूरत होगी। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुई। तो लीजिए सामीन इस वक्त।

शहर कदीम जमाने में सितारे की तरह चमकता था। अंताल्या की सूबाई सरहदों के अंदर वाक़ जांतोस, लिटोन, पतारा, ओलंपोस और फासिलिस 23 शहरों पर मुश्तमिल लीकियन लीग के अहम तरीन शहरों में से एक हैं। ये वो शहर हैं जो अनातोलिया की हजारों साल की कहानी सुनाते हैं। जांतोस अपनी दुख भरी तारीख के साथ फिनिक्स की तरह अपने राग से दोबारा जन्म लेती है और लेटून उसके दिलचस्प बुनियादों पर मबनी कहानियों के साथ इन शहरों में सबसे आगे है।

ज़ांथोस एक कदीम शहर है जहाँ एक से ज़्यादा तहजीबों का सुराग लगाया जा सकता है। अगरचे यह अपनी गद्दार कहानी के साथ तवज्जो मबजूल करवाती है, लेकिन उसकी एक और खसूसियत है जो उसे दूसरे शहरों से मुख्तलिफ बनाती है। लीकियन दौर में तामीर शुदा कब्रों के पत्थर और चट्टान के मकबरे, चट्टान के सरकोफिक्स के मकबरे जो लीकियंस ने चूने के पत्थर से बनाए थे, जो खित्ते के कुदरती मवाद हैं, आजकल सबसे दिलचस्प सकाफती विरसे में शुमार किए जाते हैं। शहर में तकरीबन 15 बड़े तामीर किए गए मकबरे हैं और माहरीन के मुताबिक इस इलाके से बाहर उन मकबरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। लीकियन जबान में पत्थर के सबसे तवील नोश्ताजात भी सिर्फ यहीं मिलते हैं। ज़ांथोस के पास 3 अगोरास, एक थिएटर और एक बड़ी मरकजी सड़क भी है, जिसे पत्थर के फर्श के साथ मजबूती से बेनकाब किया गया है। कदीम थिएटर में ऑर्केस्ट्रा का गहरा गढ़ा इस बात का सबूत है कि यह ढांचा रोमन दौर में ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था। थिएटर के स्टेज की इमारत के सामने की सजावट और पहली मंजिल आज तक बाकी है।

बतदरीज बढ़ती गई और ये पूरे लीकियन खित्ते की पनाहगाह बन गया। हरम में लेटो अपोलो और आर्टिमिस के मंदिर, एक यादगार चश्मा और आज रोमन थिएटर की कुछ बाकियात मौजूद हैं।

2,200 साल कबल तामीर किया गया थिएटर इन ढांचों में सबसे बेहतर हालत में है जो कदीम शहर लिटोन में आज तक देखा जा सकता है। शहर में खुदाई के दौरान 3 मंदिरों की बाकियात, एक यादगार चश्मा और कुछ नोश्ताजात भी दरियाफ्त हुए हैं। शहर का सबसे बड़ा मंदिर लिटो मंदिर है जो अपोलो और आर्टिमिस की माँ लेटो के लिए वक्फ है। मंदिर के करीब यूनानी, आरामी और लीकियन जबानों में एक नोश्ता भी मिला है। दूसरा मंदिर अपोलो के नाम पर बनाया गया था जो यूनानी अफसानों में आर्ट, मौसीकी और इल्हाम के देवता का तौर पर जाना जाता है। इन दोनों मंदिरों के दरमियान में आर्टिमिस का मंदिर जो दूसरों से छोटा है पोजीशन में है। खुदाई के दौरान आर्टिमिस और अपोलो की नुमाइंदगी करने वाली एक मोज़ाइक और एक तीर कमान और लीर का भी पता चला है।